0: यात्रा तिम्रो पनि अनि मेरो पनि।
1: केही आँसु केही हाँसु,
0: शायद यही नै हो जिन्दगी, शायद यही नै हो जिन्दगी।
1: यात्रा जिन्दगीको BFBS गोर्खा रेडियोमा।